माँ हो चकाचक फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा। खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। खई के पान

से चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय।

गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बनाओ रतबाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ